योजनाराम भुगदरम मंगदुर अदया वल धारना खले छिल्लुंगी दाल दिजी अफसने हदन जारक दे हो आरता लोम वाला छंगसाई की उमर जैसनी सबसे हन उसन धोलदान काटा ना खिजवे हाफ की गिम बल तत्नाब जे तू जो मसाल जोर जगत आमदन वाने की वाना हसन बांदोरन धुलख की धुलख भी तीमी ओस्तंग वे ओलान नगनर खुद ना बोलने सोलर छिल्लुंग से मुदारा